0: प्रस्तुत थियो आकाशवाणी खरसाङको साप्ताहिक कार्यक्रम गान्धी कथा, जसमा हजुरहरूले नागरी फर्म चियाबारी निवासी विमल थापाबाट मानव उत्थानमा गान्धीजीको विचार विषयमाथि एक चिन्तन सुन्नुभयो, साथै केही भक्ति संगीतहरूको पनि आनन्द लिनुभयो। त आजको यस गान्धी कथा कार्यक्रमबाट प्रस्तुता मनन तामाङ अनि सञ्चालक नामगेललाई पनि बिर्नुहोस्। साथै हजुरहरू सबैको आजको दिन मङ्गलमय बितोस्। नमस्ते।
1: यहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्र। तब केही क्षणमा यस केन्द्रबाट रिले गरी सुनाइरहेछौ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको समाचार।
2: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। अद्य राष्ट्रिय हस्ततन्त दिवसः उत्साहेन आनन्देन च आचरन्त्विति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना नागरिकाः प्रार्थिताः। एकस्मिन् चलचित्रीय सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् 25वें वर्षे अगस्त मासस्य सप्तम दिनाङ्के भारतस्य स्वातन्त्र्य संघर्षस्य भागरूपेण स्वदेशीय आन्दोलनस्य आरम्भः अभवत्। सर्वक्षेत्राणां जनाश्च एकीभूय ब्रिटिशर शासनं विरुध्य ऐतिहासिकं संघर्षं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री जनान् स्वहस्तैः वस्त्राणि निर्मातृभ्यः, निर्धनतन्तुवायकुटुम्बेभ्यः, शिल्पिभ्यश्च साहाय्यं कर्तुं प्रोत्साहितवान्।
3: मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा। हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
2: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः स्वच्छ ऊर्जायाः ग्रामीण अर्थव्यवस्थायाश्च वर्धनार्थं प्रायः 24,000 कोटिरूप्यकाणां परिव्ययुतां राष्ट्रिय जैव ऊर्जना योजनां गोवर्धनमिति अनुमोदितम्। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् सूचना प्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना अस्मात् वर्षादारभ्य 35-36 अधिक 2000 वर्षपर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् आर्थिक कार्यस्य मन्त्रिसभा समित्या अपि असमराज्ये राष्ट्रिय राजमार्ग 15 इत्यस्य पार्श्वे गुवाहाटीतः तेजपुरपर्यन्तं पंक्तिचतुष्टययुतस्य राजमार्गस्य निर्माणम् अनुमोदितम्। मन्त्रिमण्डलस्य गोवर्धनयोजनायाः अनुमोदनविषये प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सामाजिक प्रसारमाध्यमे उक्तं यत् स्वच्छ ऊर्जायै ग्रामीण समृद्ध्यै देशस्य सामूहिक स्वप्नस्य स्वावलम्बनाय च अयं निर्णयः महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्तीति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः उक्तवती यत् सर्वकारस्य महत्वाकांक्षा अस्ति यत् आधुनिक प्रगतिः संस्कृतिः परम्परयोः आधारिता भवेदिति। नवदेहल्यां सीडी देशमुख व्याख्यानं 2026 इति कार्यक्रमं सम्बोधयन्ती श्रीमती सीतारामनः अवोचत् यत् उपभोक्तावादिनः न भूत्वा समृद्धायाः सम्पन्नायाः च भारतीय सभ्यतायाः अनुरूपं सफलं भवितुं भारतस्य नियतिः भवेदिति। भारतम् ओडिशाराज्यस्य चण्डीपुरनगरस्य एकीकृत परीक्षणक्षेत्रात् मध्यमपरिधियुक्तस्य अग्निचार इति क्षिपण्याः सफलतया परीक्षणम् अकरोत्। रक्षामन्त्रालयः अवदत् यत् प्रक्षेपणेन क्षिपण्याः सर्वाः प्रचालनात्मकतान्त्रिकमानदण्डाः प्रमाणिताः अभवन्निति। केन्द्रेण गोवाराज्यस्य विधानसभाक्षेत्रेषु अनुसूचितजनजातीनां प्रतिनिधित्वस्य पुनः समायोजनस्य अधिनियमः 2025 इत्यस्य कार्यान्वयनम् अधिसूचितम्। येन गोवाराज्ये अनुसूचित जनजातीनां कृते विधानसभा स्थानानां आरक्षणस्य मार्गः प्रशस्तः अभवत्। भारतीय राजपत्रे प्रकाशितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं राज्यस्य जनजातीय समुदायानां दीर्घकालस्य अपेक्षां पूरयन् निर्वाचनक्षेत्रस्य पुनः समायोजनस्य आरक्षणस्य च प्रक्रियां समर्थयन् ह्यः अधिनियमः प्रवृत्तः अभवत्। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य मध्यप्रदेशे, राजस्थाने, केरलराज्ये, माहेप्रदेशे, ओडिशाराज्ये, तटीय दक्षिणान्तर्गत कर्णाटके च मेघावृष्ट्या प्रचण्ड बातेन विद्युत् प्रभावेन च सह प्रचंडतः अति प्रचंडायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अद्य अंडमान निकोबार द्वीपेषु झारखंड प्रदेशे लक्षद्वीपे पश्चिम बंग प्रदेशे मध्य प्रदेशे तमिलनाडु प्रदेशे पुदुचेरी प्रदेशे कारैकल प्रदेशे उत्तराखंड प्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भविष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य तन्वी शर्मा अद्य असन नगरे कोरिया मास्टर्स क्रीडायाः महिला सिंगल्स इत्यस्यां प्राग उपांत चक्रीय क्रीडायां स्वस्याः देशवासिन्या रक्षिता रामराज इत्यनया सह क्रीडति इति वार्ताः।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। उन्होंने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पादन खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
3: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का

0: परिचय दुनिया को भी हो।
1: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में दो प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई निमंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और पर्यटन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। ओवल ऑफिस में बोलते हुए ट्रंप ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निराशा व्यक्त की। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी को खरसाङ केन्द्रमा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई फेरि पनि शुभ प्रभात भन्दै आजको कार्यक्रम शुभ प्रभातमा लिएर आएका छौं दिलमाया खातीको स्वरमा केही आधुनिक गीतहरू। श्रोता, आज प्रसिद्ध गायिका दिलमाया खातीको जन्मदिन पनि हो। उहाँ नेपाली संगीत जगतकी एक प्रतिष्ठित तथा वरिष्ठ गायिका थिइन्। मधुर स्वरका कारण उहाँलाई मेलोडी मुन भनेर पनि चिनिन्थ्यो। उहाँले नेपाली आधुनिक लोक तथा सुगम संगीतमा उल्लेखनीय योगदान दिनुभएको छ। उहाँको जन्म आजकै दिन विक्रम सम्वत 1999 सालमा साउन 22 गते घुम पहाड दार्जिलिङमा भएको थियो। दिलमाया खाती दार्जिलिङ, सिक्किम, भूटान र पूर्वी नेपालमा अत्यन्त लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2018 रेडियो नेपालमा गाउनुभएको थियो। त्यसपछि रेडियो नेपालको संगीत प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गरी स्वर्ण पदक प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले 150 भन्दा अधिक नेपाली गीतमा आफ्नो स्वर दिनुभएको छ। उनको प्रसिद्ध गीतहरूमा खोलाको दुई किनार, बिछोरको पीड़ा, सम्झेर बुझेर,

0: व्यवहार गर्न वा उनीहरूको सम्पत्ति जपत गर्न कुनै समर्पित कानून पनि थिएन। विगतका सरकारहरूमा फरारहरूलाई फिर्ता ल्याउन राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभाव थियो। मोदी सरकारले फरारहरूको सुपुर्दगीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाएको छ। बलियो नेतृत्वले विश्वव्यापी पहुँच, बलियो समन्वय र स्मार्ट कूटनीति मार्फत फरार विरुद्ध तीन स्तरीय रणनीतिमाथि जोड़ दिएको छ। श्री शाहले फरार अपराधीहरूको मुद्दालाई देशको सार्वभौम सत्ता, आर्थिक स्थिरता, कानून व्यवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षासँग आन्तरिक रूपमा जोडिएको बताउनु भएको छ। मोदी सरकारले 2019 एनआईए संशोधन कानून र युएपीए संशोधन कानून लागू गर्यो। 2020 फरार अपराधीहरूलाई भारत फिर्ता ल्याउने प्रक्रियालाई मिशन मोडमा अगाडि बढाइयो। 2024 मोदी सरकारले फरार अपराधीहरूसँग सम्बन्धित विशेष प्रावधानहरू समावेश गर्दै तीन नयाँ फौजदारी कानूनहरू लागू गर्यो। पहिलो पटक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस को धारा 355 र 356 ले अनुपस्थितिमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अभियोजनदेखि मुद्दा चलाउनेसम्म फरार अभियुक्तको अनुपस्थितिमा पनि पूरा गर्न सकिन्छ। 2022 भारतले 90 इन्टरपोल महासभाको आयोजना गरेको थियो, जहाँ श्री शाहले विश्वव्यापी पुलिसको तीन स्तम्भहरू कम्युनिकेसन, कोलाबोरेसन र कोअपरेसन अर्थात् सञ्चार, सहयोग र महत्वमाथि जोड दिएको थियो। भारत र विश्वव्यापी कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूबीच समन्वय, सम्पर्क र सूचना आदान प्रदानलाई सुदृढ पार्न गृहमन्त्रीले जनवरी 2025 भारत पोलको सुरुवात गर्नुभएको थियो। भारत पोलले सीबीआई, राज्य पुलिस मुख्यालय, इन्टरपोल सम्पर्क अधिकारी, आईएलओहरू मार्फत र जिल्ला पुलिस मुख्यालयलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गरेर व्यापक सूचना पूर्वाधार सृजना गरेको छ। यस पहल अन्तर्गत राज्य र केन्द्रीय एजेन्सीहरूले 1400 भन्दा बढी एकाईहरूलाई पोर्टल मार्फत जोडेका छन्, जसले सूचनाको निर्वाध प्रवाह सुनिश्चित गरेको छ। फलस्वरूप सीबीआई र अन्य कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूबीच सूचना आदान प्रदानका लागि प्रतिक्रिया समय उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। मोदी सरकारले मनी लन्ड्रिङ रोकथाम कानूनलाई अझ कडाईका साथ लागू गरेको छ। पीएमएलए को कडाईका साथ लागू गरे पश्चात मोदी सरकारले 2019-2026 फरार अपराधीहरूको 17,874 करोड रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति पनि जफत गरेको छ। सूचनाको द्रुत आदान प्रदानलाई सहज बनाउन सीबीआईले प्रत्येक राज्यका साथै सबै केन्द्रीय अनुसन्धान एजेन्सीहरूमा इन्टरपोल सम्पर्क अधिकारीहरू पनि तोकेको छ, जसले फरार अनुसन्धानमा समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ। फरार अपराधीहरूलाई भारत फिर्ता ल्याउन प्राप्त सफलता संयोगको परिणाम होइन, बरु विश्वसनीय पूर्ण कानूनी तयारी, निरन्तर कूटनीतिक दृढता र निरन्तर अनुगमनको परिणाम हो।
1: अब केही क्षणमा रिले गरी सुनाइरहेछौ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको समाचार।
2: एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
7: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोप्रेक, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
6: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
8: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर MDR वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। UPI लेनदेन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
6: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
9: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। Ports, industry, maritime expert together on one platform.
6: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए

0: 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के एसडीएम रजत कुमार और एडीएम धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्षी एनडीए विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनकी शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्पकला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
3: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
4: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मनोज।
0: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों दिल्ली, हरियाणा,

0: डिगड़, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। सेंटर नोटिफाइज एक्ट पेविंग वे फॉर रिजर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी इन गोवा असेंबली। लोकसभा पासेस बिल टू ऑथराइज गवर्नमेंट टू परमिट बैंक्स टू लेवी चार्जेस ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस। Prime Minister Narendra Modi calls upon people to celebrate National Handloom Day today, showcasing India's rich and diverse handloom heritage and promote handloom products. Protesting Jharkhand students form 11-member team to hold talks with state government. US President Donald Trump signs 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. And in badminton, Tanvi Sharma to face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles quarterfinal of Korea Masters in Assam today.

0: আজ মহিলাদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবেন ভারতের তনভি শর্মা এবং রক্ষিতা রামরাজ। প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে স্বদেশীয় খেলোয়াড় শ্রেয়াংশী ভাল্লি শেট্টিকে হারিয়ে শেষ আটে পৌঁছেছেন তনভি। অন্যদিকে জাপানের মানামি সুইজুকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল জায়গা করে নিয়েছেন রক্ষিতা। দাবায় ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার আর প্রজ্ঞানন্দা গ্র্যান্ড চেস ট্যুর সেন্ট লুইস র্যাপিড অ্যান্ড ব্লিটস প্রতিযোগিতায় খেতাব জিতেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেষ রাউন্ডের আগে উজবেকিস্তানের জাবুকির সিন্দারোভের সঙ্গে ড্র করে 20 বছরের দাবাড়ু খেতাব নিশ্চিত করেন। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তুলতে স্বল্প আয়ের এবং পিছিয়ে পড়া তাঁতি পরিবারগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রীয় সরকার গোয়া বিধানসভায় তপশিলী উপজাতি ভুক্তদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয়ে গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ইউপিআই লেনদেনে ব্যাংকগুলিকে শুল্ক আদায়ের অনুমতি দিতে লোকসভায় একটি বিল পাশ হয়েছে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতে ঝাড়খণ্ডের বিক্ষোভরত পড়ুয়ারা 11 সদস্যের দল গঠন করেছে। খবর এখনকার মতো এ পর্যন্তই।
1: আকাশবাণী কলকাতা সমীক্ষা, শিরোনাম চিরকিশোর।
2: यो आकाशवाणी खरसाङ हो, प्रादेशिक समाचार सीमा क्षेत्रीबाट सुन्नुहोस्। स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यभरि हर घर तिरंगा अभियान गर्ने भएको छ। नवान्नमा यसको घोषणा गर्दै मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले यो अभियान अगस्त 10 देखि पूरै राज्यमा एकैसाथ शुरू हुने बताउनुभयो। यस अन्तर्गत पञ्चायत, ब्लक, विभाग र जिल्ला प्रशासन मार्फत 70 लाख राष्ट्रिय झण्डा निशुल्क वितरण गरिनेछ। मुख्यमन्त्रीले यस अभियानको उद्देश्य स्वतन्त्रता दिवसको उत्सवसँग अधिकभन्दा बढी मानिसहरूलाई जोड्नु र उनीहरूलाई हरेक घरमा तिरंगा फहराउन प्रेरित गर्नु हो। यसका लागि प्रशासनिक तहमा व्यापक तयारी गरिएको छ। दक्षिण कोलकाताको भवानीपुर विधानसभा क्षेत्रमा अगस्त 7 अर्थात आज विशाल तिरंगा जुलुस निकाल्ने उहाँले बताउनुभयो। यसपछि 10 अगस्तमा कोलकाताको श्याम बजारमा रहेको नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको प्रतिमाबाट विशाल तिरंगा जुलुस निकालिनेछ, जसमा लगभग 50,000 मानिसहरूले भाग लिने अपेक्षा गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीले यो अभियान तिरंगा वितरणमा मात्र सीमित नहुने बताउँदै राज्यका सरकारी भवनहरू, ऐतिहासिक स्मारकहरू, सम्पदा स्थलहरू, विद्यालयहरू, कलेजहरू र अन्य शैक्षिक संस्थाहरूलाई तिरंगाका 3 रंग केसरिया, सेतो र हरियो रंगमा विशेष बत्तीले सजाइएको छ। उहाँले राज्यका जनतालाई स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आआफ्नो घरहरूमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउन र हर घर तिरंगा अभियानमा उत्साहपूर्वक भाग लिन अपील गर्नुभयो। मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो, यो अभियानले राष्ट्रिय एकता, देशभक्ति र स्वतन्त्रता सेनानीहरूको सम्मानको भावनालाई अझ बलियो बनाउनेछ। पश्चिम बंगाल सरकारको अन्नपूर्ण योजना अन्तर्गत पहिलो किस्ती रकम 17 अगस्तदेखि लाभार्थी महिलाहरूको ब्याङ्क खातामा पठाइनेछ। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले हिजो नवान्नमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणमा 10 जुलाईसम्म आवेदन दिएका र प्रमाणीकरणमा सही पाइने महिलाहरूले मात्र 3,000 रूपियाँ पाउने उहाँले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो, 31 जुलाईसम्म यस योजनाको लागि 2.16 करोड आवेदन प्राप्त भएका छन्। सबै आवेदनको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। योग्यता कागजात र अन्य सूचनाको प्रमाणीकरण सत्यापन भइरहेको छ। त्रुटि नदेखिएका आवेदनहरूलाई योजनाको लाभ दिइनेछ। यसैबीच मुख्यमन्त्रीले अन्नपूर्ण योजनाको बारेमा सोसियल मीडियामा भ्रामक र गलत सूचना फैलाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। यस्ता घटनामा सरकारले निगरानी गरिरहेको र फर्जी खबर फैलाउनेलाई कानूनी कार्यवाही गरिने बताउनुभयो। उहाँले जनतालाई सरकारी सूचनामा मात्र भर पर्न आग्रह गर्नुभयो। पश्चिम बंगालकी महिला तथा बाल कल्याण मन्त्री तथा आसानसोल दक्षिणकी विधायक अग्निमित्र पौलले सोसियल मीडियामा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै आफ्नो नाम गरी जबरजस्ती वसुली गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। मन्त्रीको नाममा पैसा वसुलेको आरोपमा बुधबार आसानसोल साउथ पुलिस स्टेशनमा उजुरी दत्ता भएपछि पुलिसले अनुसन्धान सुरु गरेको समयमा यो भिडियो सार्वजनिक भएको हो।

0: सुनिश्चित हो गया है। यह अधिनियम कल से प्रभावी हुआ। इससे राज्य के जनजाति समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया है। लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान ऐप के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान अवसंरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में रांची में जारी प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। आंदोलनरत छात्रों ने कल शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वे भी विद्यार्थी की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनकी शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्र और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड

0: स्टोर्स सेंट लुइस रैपिड और ब्रिट्स का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जाओखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। इससे पहले जून में प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में आयोजित नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: भक्ति संगीत चलचित्र जिस देश में गंगा बहती है बाट मुकेश को स्वर्मा सुनोस एक सूचना।

0: 2027. Our census, our progress.
1: आकाशवाणी खरसांग श्रोता, नया दिल्ली को राष्ट्रपति भवन संस्कृति केंद्र में भारत सरकार को वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को कार्यक्रम भारत को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को गरिमामय उपस्थिति में संपन्न होना लागि रहेको छ, जसको सीधा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रबाट हृदय गरी सुनाइरहेछौं।

0: वस्तु परंपरा, बुनकरों की अद्भुत कला और हमारी सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है। इस गरिमामयी अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, देशभर से चयनित उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों और शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसका विवरण देने के लिए मैं हूं शोएसियार खान और मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
1: नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर डियर लिसनर्स ट्यून्ड इन, एंड वी एक्सटेंड आवर हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स ऑन द 12th नेशनल हैंडलूम डे। The Ministry of Textiles, Government of India, is celebrating the 12th National Handloom Day today with the national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center, New Delhi. The function celebrates India's rich handloom heritage and recognizes the contribution of the handloom weaving community to the nation's cultural and economic development. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will grace the occasion as the chief guest. The function will also be attended by the Union Minister of Textiles, Shri Giriraj Singh, Union Minister of State for Textiles, Shri Pavitra Margarita, Srimati Neelam Shami Rao, Secretary Textiles, and Dr. M. Bina, Development Commissioner, Handlooms. The celebrations will also be attended by Sant Kabir Handloom Awardees and National Handloom Awardees and their family members. Handloom weavers from across the country, members of the Award Selection Committee, eminent personalities associated with the handloom sector, senior government officials, media representatives and other distinguished guests. A major highlight of the celebrations is the presentation of the Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for the year 2025. A total of 22 awards comprising 3 Sant Kabir Handloom Awards and 19 National Handloom Awards will be conferred upon outstanding handloom weavers for their outstanding craftsmanship, innovation and contribution to the preservation of India's handloom traditions. The function will also witness the release of 4 commemorative postage stamps celebrating India's rich and diverse handloom weaving traditions. 2 publications will also be unveiled by the Honorable President: Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India, and the Handloom Awards Book 2025 will be unveiled during the function. An exhibition showcasing award-winning handloom products has been organized on the sidelines of the events. Visitors here will have the opportunity to witness live demonstrations of traditional kani weaving and wall hanging weaving, providing a glimpse into the diversity and craftsmanship of India's handloom traditions.
0: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, aaj राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान प्रतिष्ठित हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति, हथकरघा उद्योग के प्रतिनिधि, मास्टर बुनकर, डिजाइनर, निर्यातक, कारीगर और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। भारत की समृद्ध हथकरघा परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास में असाधारण योगदान के लिए कुल 22 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विजेता और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता शामिल है। वस्त्र मंत्रालय ने संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र में

0: बुनाई, नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्योगों और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के हथकरघा विपणन सहायता घटक के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दौरान ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने भारत की हथकरघा विकास को मजबूत करने और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कार्यक्रम में देश भर से संसद सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ, शैक्षणिक संस्थान, निर्यातक, डिजाइनर और हथकरघा बुनकर शामिल हो रहे हैं। हथकरघा पुरस्कारों का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और निरंतर प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना है। ये पुरस्कार उत्कृष्ट शिल्प कौशल, पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने हेतु आधुनिक तकनीकों को अपनाने, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन नवाचार और बुनकर समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देते हैं। अगर बात करें संत कबीर हथकरघा पुरस्कारों की, तो ये उन हथकरघा बुनकरों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने असाधारण शिल्प कौशल और भारत की बुनाई परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए आजीवन समर्पण दिखाया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन असाधारण तकनीकी कौशल, नवाचार, इस क्षेत्र में निरंतर योगदान, पारंपरिक बुनाई के तरीकों को बढ़ावा देने, कारीगरों को मार्गदर्शन देने और समुदाय के विकास के लिए प्रयासों के आधार पर किया जाता है। ये जो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार है, इसमें शामिल है एक सोने का सिक्का, तामपत्र, शॉल, प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन हथकरघा बुनकरों और हितकारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट रचनात्मक गुणवत्ता, नवाचार और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। ये पुरस्कार कारीगरों और संस्थानों को भारत की विविध हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करते हुए शिल्प कौशल, उत्पाद विकास और बाजार में पहुंचने वाले मानकों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बुराई श्रेणी के पुरस्कार विजेताओं का चयन जोनल मुख्यालय और केंद्रीय स्तर की चयन समितियों के माध्यम से एक कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इन समितियों में अनुभवी, पेशेवर, तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं जो निर्धारित पात्रता मानदंडों और मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर नामांकनों का आलंकन करते हैं। डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्यमों और उत्पादक कंपनियों से संबंधित श्रेणियों के लिए नामांकन को अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यालय समिति और केंद्रीय स्तर की समिति द्वारा एक व्यवस्थापित मूल्यांकन के द्वारा गुजरना पड़ता है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये 12वें राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार का वितरण करेंगी।
1: Yes, you're absolutely right. The National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement which launched on the 7th of August 1905 that gave renewed impetus to indigenous industries and India's handloom sector. The observance recognizes the enduring contribution of handloom weavers to the country's cultural heritage and socio-economic development. Since its inception in 2015, National Handloom Day has served as an occasion to celebrate the artistry, skill and dedication of India's handloom weavers while reaffirming the government's commitment to the preservation, promotion and sustainable development of the handloom sector. India's handloom sector continues to be one of the country's largest source of sustainable rural employment, supporting livelihoods of more than 35 lakh persons, with women constituting over 70% of the workforce. Besides its economic significance, the sector remains a custodian of India's rich textile traditions and an important contributor to environmentally sustainable production practices. In the 136th episode of Mann Ki Baat on the 26th of

0: July, the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi had said that on the 7th of August, our country will celebrate National Handloom Day. On this occasion, quote the Prime Minister, we celebrate the skills and creativity of our weaver brothers and sisters. These friends of ours are carrying forward traditions that have been passed down through generations, unquote the Honorable Prime Minister. Every handloom garment tells the story of a specific region or community and the countless people associated with it. These are people who are proudly dedicated to preserving India's cultural heritage. The Honorable Prime Minister has urged every citizen to honor our weaver friends by encouraging handloom crafts. This will further strengthen the spirit of being vocal for local. Since 2015, the way handloom has been promoted in the country, it has improved the lives of a large number of people. The saris of Pochampalli and from Kuthampalli and Kutch, these saris have enriched many individuals and touched many groups, infusing new energy and identified into our glorious handloom traditions. These are carrying forward the beautiful tradition, while others are engaging women weavers to create wool products. People are preserving their traditional arts and providing employment to our sisters. And this also brings to mind that our handlooms indeed are a rich tapestry of what India has to offer to the world. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, in just a short while from now, will present the National Handloom Awards and the Sant Kabir Handloom Award to the winners of the National Handloom Awards 2025 at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में ये हथकरघा पुरस्कार देंगी। इसमें शामिल है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, कमला देवी चट्टोपाध्याय हथकरघा पुरस्कार, हथकरघा उत्पादों के डिजाइन विकास स्टार्टअप उद्यम और प्रोड्यूसर कंपनी और विपणन हेतु राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार वर्ष 2025। आपको बता दें, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा मिली थी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के संकल्प ने भारतीय हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान की। उसी ऐतिहासिक विरासत के सम्मान में वर्ष 2015 से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र का वातावरण बहुत ही गर्मीमय और अत्यंत भव्य दिखाई दे रहा है। सभागार को देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक हथकरघा कलाकृतियों, रंग बिरंगे वस्त्रों और पुष्प सज्जा से सुसज्जित किया गया है। देशभर से आए बुनकर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी, डिजाइन विशेषज्ञ और अनेक विशिष्ट अतिथि इस समारोह में उपस्थित है। भारत की पहचान उसकी विविधता में निहित है और यही विविधता हमारे हथकरघा उद्योग में भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी विश्व भर में अपनी महीन जरी बुनाई के कारण प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियां अपनी शुद्ध रेशमी बुनाई के कारण एक विशेष स्थान रखती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां अपनी हल्की बनावट और उत्कृष्ट डिजाइन के लिए जानी जाती है। तेलंगाना की पोचमपल्ली इकट, गुजरात का पटोला, पश्चिम बंगाल की बालूचरी और जामदानी, असम का मूंगा रेशम और कश्मीर का पश्मीना, ये सभी भारतीय बुनकर की अद्भुत कला के जीवंत उदाहरण है। हथकरघा उद्योग भारत में कृषि के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े पारंपरिक क्षेत्रों में से एक है। देश भर में लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं।

0: करगा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता का प्रतीक बन चुकी है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।
1: Yes, you are absolutely right. And today, the Honorable President of India will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Komala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to one awardee, and National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Komala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for the year 2025 to two awardees, and the National Handloom Award for Startup or Producer Company for the year 2025 to one awardee. And it is indeed a proud moment for them. And these awardees will also interact with the Honorable President. And in just a short while from now, we shall be taking you over to the Rashtrapati Bhavan Cultural Center, where the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 and the National Handloom Award 2025. We take you over to Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
2: Namaskar, Maninye Rashtrapati Ji, evam manch par viraje vishisht atithigan. Aaj 12ve Rashtriya Hatkarga Divas Samaroh ka shubharam hum sarvapratham deep prajwalan ke saath karenge. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें एवं मंच पर विराजे सभी माननीय अतिथिगण, वस्त्र मंत्री जी, आदरणीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री जी, वस्त्र सचिव एवं विकास आयुक्त हथकरघा से भी अनुरोध करती हूं कि वे कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हों।

0: धन्यवाद। और अब इस समारोह का आविर्भाव करते हुए मैं सर्वप्रथम श्रीमती नीलम शमी राव, सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना स्वागत भाषण दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, डिस्टिंग्विश्ड अवॉर्डीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, members of the handloom fraternity, industry leaders, development partners, devyon aur sajjanon, main is 12ve rashtriya hathkarga divas par maniye rashtrapati ji ka swagat karti hu. main swagat karti hu desh ke sabhi बुनकर भाइयों और बहनों का। इट इज अ प्रिविलेज टू जॉइन यू ऑल इन सेलिब्रेटिंग द 12th नेशनल हैंडलूम डे, एन ओकेजन दैट ऑनर्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज वीविंग कम्युनिटी एंड रीअफर्म्स नेशंस कलेक्टिव कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ Swadeshi. The handloom sector, a custodian of our civilizational heritage, grameen rozgar ka sadhan, mahilaon ke aage rakhe hue development ka sutradhar aur sustainable production ki dhuri. Yeh 35 lakh weavers

0: और उससे जुड़े हुए लोगों को सपोर्ट करता है। मंत्रालय अपनी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में हैंडलूम डेवलपमेंट की दुई पक्षीय या दो तरीके की ऑब्जेक्टिव्स पर काम करता है, जहां पर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव, रेजिलियंट और फ्यूचर रेडी हैंडलूम इकोसिस्टम की भी हम बातचीत करते हैं। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम और रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के माध्यम से हम लाखों बुनकरों
1: कब्स। हेलो हेलो, देख रहे हो कैसे बादल जैसे लाइट लाइट एकदम फ्रेश और एक्टिव लग रहा हूं।
2: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक गेन सभागार में 12वें राष्ट्रीय हैंडलूम पुरस्कार दिए जा रहे हैं।
0: 1.5 lakh weavers have been onboarded onto the India Handmade e-marketplace. Handloom Hearts, Cottage, Kunj have been repositioned as a professionally curated year-round platforms to reach out to the consumers and bring the best of handlooms and handicrafts to the world. The formation of 200 handloom producer companies across the country has enabled weavers to work together professionally, access markets more effectively and achieve economies of scale. Weave the future ke tahat mein artificial intelligence enabled design tools unke dwara banaye gaye traditional motifs ko reimagine karne ki cheshta और ग्लोबल बाजार के अनुरूप तैयार किए गए डिजाइंस, वाइल डिजिटल कैटलॉगिंग एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर कनेक्टिंग लूम्स इन रिमोट विलेजेस डायरेक्टली टू कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। क्यूआर बेस्ड ऑथेंटिकेशन वुड प्रोवाइड ट्रेसेबिलिटी, एंश्योरिंग दैट द स्टोरी, स्किल एंड हेरिटेज बिहाइंड ईच वीव reaches with complete transparency and trust. Institutional partnerships remain essential to this journey. Initiatives like Weave the Future are positioning India's handloom tradition as a global leader in sustainability, championing circularity, responsible production, innovative designs, and the slow fashion. Our collaboration with organizations such as UN Women, academic institutions like IITs, design schools, NIFT, and research bodies has enabled new approaches. The growing recognition of more than 100 geographical indicators tagged handloom products has also provided larger, distinct, and unique identity. In the vision of Viksit Bharat 2047, the handloom sector stands as a shining tradition and progress. With technology as an enabler and weavers at the heart of journey, it is building a future where this legacy of handloom leads the world. Aaj is Rashtriya Hatkarga Divas par, main aap sabhi ko apna sincere appreciation देती हूँ, राज्य सरकारों को भी, implementing agencies को भी, development partners और industry stakeholders को भी, पर सबसे ज्यादा उन बुनकर बहनों और भाइयों को जिनके बुने हुए ताने बानों से हमारा जीवन रंगीन, जीवंत और एक memory के साथ जुड़ा रहता है। I once again welcome the Honorable President Madam and everybody on this occasion of the 12th Handloom Day. Thank you. Jai Hind.
3: Thank you, ma'am, for this warm welcome address. अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करती हूं कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत एवं सम्मान करें। आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह टू काइंडली फेलिसिटेट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
2: और अब केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह माननीय राष्ट्रपति का शॉल पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। तालियों के साथ सबने उसका अभिवादन किया।
3: धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। और अब हम बढ़ते हैं आज के इस समारोह के इस महत्वपूर्ण भाग पर, जो है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों की ओर। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन कुशल बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित करते हैं जिनकी लगन, इन्वोकेशन और कलात्मकता ने हमारी राष्ट्र की हथकरघा विरासत को अत्यंत समृद्ध बनाया है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, जिसमें 3 पुरस्कार जिसमें पदक और ताम्रपत्र शामिल है, और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, ये कुल 21 पुरस्कार हैं जिसमें ताम्रपत्र शामिल है, इनके विजेताओं को अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित करें। सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 के साथ।
2: माननीय राष्ट्रपति
3: बुनकर वर्ग से आ रहे हैं ओडिशा से, श्री राम मेहर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपके उत्पाद का नाम है विजित पार खादी साड़ी। मेडल और ताम्रपत्र के साथ संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा रहा है श्री राम मेहर। हमारे अगले विजेता हैं बुनाई वर्ग से ही असम से आई श्रीमती रुनिमा चेतिया चौधरी। आपका विशेष उत्पाद है मूंगा सिल्क साड़ी।

0: हमारे अगले विजेता हैं उत्तर प्रदेश से बुनाई वर्ग से ही जनाब शाह मोहम्मद अंसारी, आपका विशेष उत्पाद जरबख्त श्वेतांबरी अवध जामदानी साड़ी। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 की ओर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बुनाई वर्ग के लिए ही तमिलनाडु राज्य से आए अन्ना मलाई मारीमुतो, आपका विशेष उत्पाद है कांचीपुरम रेशमी साड़ी और ये जॉइंट अवार्ड है। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता हैं कुमारन बलरामन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, आपका भी विशेष उत्पाद कांचीपुरम रेशमी साड़ी। हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही तेलंगाना से आए श्री गंजी वेंकटेश, आपका विशेष उत्पाद इक्कत साड़ी। बुनाई के लिए ही अगले विजेता आंध्र प्रदेश से श्री मरकला नटराज, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए कॉटन टसर हाफ और हाफ जामदानी साड़ी, आपका विशेष उत्पाद। अगले विजेता उत्तर प्रदेश से बुनाई के लिए जनाब नसीम अंसारी, आपका विशेष उत्पाद इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी। जम्मू और कश्मीर से हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही ये भी एक जॉइंट अवार्ड है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जनाब फयाज अहमद वानी, आपका विशेष उत्पाद चांददार कानी शॉल। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता जनाब मंजूर अहमद हजाम, हमारे अगले विजेता हैं मध्य प्रदेश से बुनाई के लिए श्री कमल गौड़, आपका विशेष उत्पाद महेश्वरी साड़ी। पश्चिम बंगाल से आए हमारे अगले विजेता हैं श्री अभिनवा बसक, फॉर 500 काउंट मसलिन खादी जामदानी साड़ी।
1: आपको बता दें राष्ट्रपति भवन के सभागार के सांस्कृतिक केंद्र में इस वक्त राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 का वितरण किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा।
2: Yes, you are absolutely right, and the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, has already conferred the Sant Kabir Handloom Award to two awardees, Shri Ram Meher from Odisha for weaving, and the handloom product was Bichitpar Khadi Sari, and to Shri Shah Mohammad Ansari of Uttar Pradesh on the category Languishing Weaves, and the product was Zarbaft Shwetambari Tissue Jamdani Sari. The Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 was conferred upon Shrimati Runima Chetia Choudhury of Assam for the category Weaving, and her product was Natural Dyed Muga Silk Sari. The National Handloom Awards 2025 are being conferred upon 12 awardees, Shri Annamalai Marimuthu of Tamil Nadu for weaving the Kanchipuram Korvai silk sari, and this award jointly was also conferred upon Shri Kumaran Balaraman. Shri Ganji Venkatesh of Telangana got the National Handloom Award for Ikat Sari. Shri Murukala Nataraju of Andhra Pradesh for his product Cotton Tasar Half and Half Jamdani Sari. Shri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani Sari. Shri Manzoor Ahmed Hajam and Shri Fayyaz Ahmed Wani of Jammu and Kashmir for the Chand Dar Kani Shawl, and Shri Kamal Gaud of Madhya Pradesh for the Maheshwari Sari. Shri Abhinavo Boshak of West Bengal for the Khadi Muslin Jamdani Sari. Shri Prafullo Kumar Sahu of Odisha for the Jagat Singhpur Sari. Shri Bariga Ram of Rajasthan, a young weaver, for the Pattu Sari. And Shri Vankar Keshabhai from Uttar Pradesh for the Tangalia Dupatta. And the Honorable President is conferring the various awards to the awardees on the National Handloom Day 2025. And she is conferring the National Handloom Awards 2025.
0: Marketing training se hi agle vijeta hain Tamil Nadu se Messrs. 31 Kovilwadi Hatkarga Bunkar Sahkari Samiti. और आज का आखिरी पुरस्कार असम से स्टार्टअप उद्यम यानी निर्माता कंपनी के लिए मेसर्स मार्वेला एसोसिएट्स. सो लेडीज एंड जेंटलमैन दैट कंक्लूड्स आवर अवार्ड्स प्रेजेंटेशन. विद दैट वी कंक्लूड द अवार्ड्स लिस्ट. आपके उत्कृष्ट कार्य संपूर्ण हथकरघा समुदाय और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है. सभी पुरस्कार विजेताओं को हमारी हार्दिक बधाई. आज हम मध्य भारत के आले से रंगे हथकरघा वस्त्र नामक एक विशेष कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी यहां पर होने जा रहा है. इसका शीर्षक है धरती यानी अर्थ, जड़ यानी रूट्स और धागा यानी थ्रेड. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस कॉफी टेबल बुक का अनावरण करें.

0: धन्यवाद। ये प्रकाशन हमारे हथकरघा कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और दृढ़ता के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करेगा। और अब हम हथकरघा पर आधारित चार स्मारक डाक टिकटों के विमोचन की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री जितेंद्र गुप्ता, महानिदेशक डाक सेवाएं। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और माननीय राष्ट्रपति जी को हथकरघा पर जारी स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम विमोचन हेतु भेंट करें।
1: And the Honorable President of India is being presented with this special commemorative postage stamps, and the Honorable President is releasing these commemorative postal stamps, which have been unveiled by the Department of Post, Government of India. These are all ₹5 postal stamps which depict the rich heritage of India's handlooms.

0: is a proud moment for all our citizens who are involved with the handloom sector. And the Honorable President has also released two publications. The first one, Earth, Root, Thread, Al-Dyed Handloom Textiles of Central India, and another coffee table book, the Handloom Awards Book 2025. And as we mentioned today, that the Honorable President of India presented Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees from Odisha and Uttar Pradesh, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to Srimati Runima Chetia Chaudhary.
1: All right, Assam. Time to get one NRI task done. I'm going out.
0: There were 12 awardees for the National Handloom Award 2025 from Tamil Nadu, which went jointly to Sri Annamalai Marimuthu and Sri Kumaran Balaraman for their Kanchipuram Kurvai silk sari. Sri Ganchi Venkatesh of Telangana bagged the National Handloom Award 2025 for the Ikat Sadi. Sri Murakala Nataraju of Andhra Pradesh got the Katan Tushar Jamarani Sadi. Sri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani
2: Sadi.
0: And we have the Union Minister of State for Textiles, Sri Pavitra Margarita.
2: पद तक आपकी प्रेरणादायी यात्रा आपकी सादगी संवेदनशीलता और जनसभा के प्रति समर्पण 140 करोड़ देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं As we gather here today we remember 7th of August 1905 when the Swadeshi movement became a symbol of India's resolve for self-reliance more than a century later under the visionary leadership of Paramadriniya Pradhan Mantri Sri Narendra Modi ji, that spirit continues through the vision of Atmanirbhar Bharat, vocal for local and local for global, creating new opportunities for our weavers and artisans. Maniya Rashtrapati ji, पिछले वर्ष राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह के अपने संबोधन में आपने जीआई टेक के महत्व पर भी विशेष बल दिया था और अधिक से अधिक पारंपरिक उत्पादों को जीआई पहचान दिलाने का आह्वान किया था इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दो दिन पहले ही जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का सफल आयोजन किया गया जिसने जीआई इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने की भी दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है साथ ही ये बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2014 के बाद हथकरघा एवं हस्तशिल्प श्रेणी में जीआई पंजीकरणों में तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई है The true credit for the enduring legacy and growing global recognition of India's handloom and handicraft traditions belong first to our generations of weavers and artisans who have preserved this priceless heritage for thousands of years. Under the constant guidance of Honorable Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh Ji, and through the dedicated efforts of the Secretary Textile, DC Handlooms, and the entire Ministry of Textile team, this legacy continues to reach the new heights. As I conclude, I would like to extend my heartfelt congratulations to all the recipients of Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for your craftsmanship, innovation and dedication. You continue to preserve our weaving traditions while inspiring future generations. Antata, aiye hum sab milkar ye sankalp lein ki hamare bunkaron ko samman पहचान और नए अवसर निरंतर मिलते रहे तथा हमारे बुनकरों द्वारा बुना गए प्रत्येक धागा विकसित भारत के सपने को और अधिक सशक्त करे धन्यवाद जय हिंद
3: धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी भाषण के लिए आपका धन्यवाद और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं श्री गिरिराज सिंह जी को माननीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार आपसे अनुरोध है कि भारत के हथकरघा क्षेत्र के भविष्य के लिए अपना संबोधन और दृष्टिकोण साझा करें जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए
4: भारत माता की, भारत माता की, बंदे बंदे। आज 12वें हस्तकरघा दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति, हम लोगों के आन बान शान, भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक और हमारे हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज हम पूरे देश और दुनिया में आपका नाम लेता हूं, आपका मैं स्वागत भी करता हूं। मैं जब मंच पर बैठे हमारे सहयोगी राज्य मंत्री मानवर मार्गरेटा जी पवित्रा, हमारी सचिव नीलम शम्मी राव जी, हमारी डीसी हैंडलूम श्रीमती एम बीना जी और सभी यहाँ आए हुए हमारे विजेता बुनकर भाइयों, अधिकारी, प्रेस मीडिया, सभी का मैं सम्मान करता हूं। जब मैं 12वें हस्तकरघा दिवस की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अतीत को खो दिया, क्योंकि धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को देता हूं, जिन्होंने 14वें प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके मन में लगा जो हैंडलूम हमारे आजादी के पहले से हजारों वर्ष से हमारे सभ्यता और संस्कृति का एक महान कृति है, उसको शायद नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज इस क्यों किया गया मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब हमारे सहयोगी मित्र कह रहे थे 1905 की बात, उसी 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन के दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 7 अगस्त को ये पुनर्स्थापित करने का काम किया, क्योंकि ये भारत के विकास को विरासत के साथ जोड़ के देखते हैं। ये हमारी ऐसी विरासत जिसे हम याद करते हैं कि भारत की विरासत में खादी और हैंडलूम एक अंगूठी से बंगाल का मुस्लिम मसलिन पूरे पास हो जाता था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने इस पे प्रहार किया हमारी टेक्नोलॉजी को, तो हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन, हमारे पूर्वजों ने मैनचेस्टर के कपड़े को बहिष्कार करके और इन्हीं बुनकर भाइयों के कृति पर हम पूरे देश को एक जन आंदोलन में बदलने का काम किया।
0: एंड वी आर ब्रिंगिंग यू द नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर। The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, conferred the National Handloom Award 2025 to the awardees. And now the Minister for Textiles, Shri Giriraj Singh.
4: Jab 10 saal baad aata to 43 lakh, aur jab uske baad 10 lakh aata to 35 lakh. Aakhir kyon? Aaj main kuch naujawan भाइयों को देखा, मेरे अंदर वो प्रसन्नता जो मैं कह नहीं सकता। और मेरा लक्ष्य है कि भारत के बुनकर भाइयों के लड़के और लड़की इस पेशा में कैसे आएं, ये मेरी चिंता है। और मेरी चिंता है ये तब होगा जब मैं इनके संतति को, इनको अच्छी रकम मिले। ये तो संत कबीर हैं, ये हैंडलूम अवार्ड है, एवार्डी के कपड़े को तो मैडम मैं बीड भी कर रहा हूं, जिससे बुनकर भाइयों से पूछता हूं संत कबीर इस साड़ी का कीमत कितना लेंगे, तो 1,90,000। और कॉटेज में लोग लेकर के जाते लेकिन आम बुनकरों की पीड़ा चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, जिस देश का ले, वो आज उनकी पीड़ा को कहना उचित नहीं लगता। लेकिन जो संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में लिया है, क्योंकि जब हम सूती कपड़े को देखते हैं तो बाजार में जाता है तो लोग उसे पावर लूम से कंपेयर करते, फिर उसकी कीमत देखते। हमने तय किया है आने वाले दिन में हम निश प्रोडक्ट बनाएंगे और जीआई जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करेंगे। केवल निश प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, हमने गुवाहाटी में हम लोगों ने विभाग ने हमने मॉडल को स्थापित करने का काम किया है। हमारे देश में 29 बीवर सर्विस सेंटर है, 3 एक्सटेंशन है, 11 राज्य और केंद्र मिला के IISTE है और 20 निफ्ट का कैंपस है। मैं सबों को लेकर के, लेकिन फर्स्ट फेज में मैं सर्विस सेंटर को, IISTE को, एक्सटेंशन को, कि किसी भी बुनकर भाइयों की आमदनी मिनिमम 50,000 रुपया मासिक से कम नहीं हो। ये मोदी जी की पीड़ा है, ये गरीबों का, और ये होगा, ये करना शुरू कर दिया हूं गुवाहाटी से, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा भी आपसे निवेदन करता हूं, इसमें हम अपस्किलिंग करते हैं। अपस्किलिंग करने के बाद अगर लूम नहीं है तो लूम हम देते हैं, लूम अगर है उनको सूता देंगे, उनको डिजाइन देंगे, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो नहीं कर पाएंगे उनकी मार्केटिंग भी करेंगे। अगर ये हमारे बुनकर भाइयों को ठीक लगता है तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से सब विभाग को एक दें। और ये शुरू कर दिया है, अभी 25,000 से 30,000 रुपये गुवाहाटी विभिन्न सर्विस सेंटर क्या दे रहे हैं, 6 राज्यों में इसको फर्स्ट फेज में, और लक्ष्य है 2030-31 तक कोई ना बचे। दूसरा तय किया, आज तक इनकी पहचान कार्ड नहीं था, मुख्य कानून 6 था, जो कह दिया सर्वे में वही हम लिख लेते थे। लेकिन अब हम लोगों ने 2025 के जनवरी से हमने इनका पहचान कार्ड बनवाया, 35,00,000 आए। लेकिन जो नई गतिविधि हुआ है, हम उस पहचान को ऑनलाइन छोड़ा है, और केवल ऑनलाइन नहीं छोड़ा है बल्कि हर दिन वो, और मुझे खुशी है अब 65,00,000 से हम 35,00,000 पहुंच गए, अब 35 से हम 65 रिवर्स में जाएंगे, लगभग 1,00,000 नए बीभर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये हमारा संकल्प है। हमारा दूसरा संकल्प है कि बीभर भाई अपने बच्चों को IISTE में दें, पढ़ाएं, फिर निफ्ट में उसको हम प्रमोट करेंगे, और ये 2,00,000 रुपया इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत सरकार टेक्सटाइल डिपार्टमेंट देने का काम करेगा। इसलिए ये पीड़ा है, आज कई युवक जब आईआईएसटी से पढ़ करके निफ्ट जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, वो 150 लोगों को रखते हैं। मेरा उद्देश्य है मास्टर बीवर यानी बिचौलिया, मास्टर बीवर से बीवर का मुक्ति दिलाना। उसके लिए ई कॉमर्स रखा है, उसके लिए विदेशों में ईपीसीएच से के साथ जोड़ करके अभी शुरुआत की है 50 हैंडलूम 50 हैंडीक्राफ्ट। क्योंकि इस बार जो योजना हम बना रहे हैं वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों को मिला करके, हैंडलूम की साड़ी बन गई, अगर उस पर पैच वर्क हुआ तो वो हैंडीक्राफ्ट हो जाता। तो हमने तय किया है दोनों को मिला करके एक नए तरह से हम बीवर भाइयों के जिंदगी में परिवर्तन करेंगे। अभी राष्ट्रपति महोदया अभी आईआईटी दिल्ली से एमओयू किए हैं, केवल एमओयू नहीं किए हैं, अभी 100 बीवर से जस्ट शुरू किया है एक एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू, उसमें हम कार्बन फुटप्रिंट कितना कैप्चर कर रहे हैं वो उनको दिखाई देगा, बीवर को दिखाई देगा कि उनकी एफिशिएंसी कितना आज के काम का है, उनको दिखाई देगा। एआई टूल्स भी लगा रहेगा, उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगा तो एआई टूल उसको रोकेगा। इस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा हम इनके जो लूम है लूम को परिवर्तित करेंगे। आसाम का एक शिवसागर जो जिला है वहां एक रिटायर्ड इंजीनियर ने लूम बनाया, अभी वो 70 से 80 ppm पर जा रहा है। उसने मुझे कहा है कि हम 180 ppm पर जाएंगे पर मिनट, 180 पिक जाएगा। लोगों ने कहा ये तो पावर लूम की तरह होगा, हम कहा टेक्नोलॉजी तो इसी को कहते हैं, जब टेक्नोलॉजी होगा तभी हम ये करेंगे, हम मैकेनिकल चेंजेज लाएंगे। मैं इतना ही आपको वादा करता हूं कि टेक्स्ट
5: आपको बता दें 12वें राष्ट्रीय यादगार दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति ने हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। और आपको बता दें ये कई अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
4: और जो मेरा लक्ष्य है 5 लखिया भाई और बहन बनाना, 10 लखिया बनाना, इस संकल्प को पूरा करेंगे आपके नेतृत्व में, मैं यही कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके उत्साहवर्धक संबोधन और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने में आपके सटीक नेतृत्व के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं माननीय राष्ट्रपति जी को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया सभा को अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
6: बैठे बैठे, मैं कुछ कहने से पहले मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अच्छे लोगों को दिया है, अच्छे एक मंत्री को दिया है। मुझे लगता है टाइम का पाबंदी है, टेक्सटाइल ऊपर में बातें करने के लिए उनको एक दिन दिया जाए तो शायद कम होगा। इस समारोह में उपस्थित भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिजाराज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स श्री पवित्र मार्गरेटा जी, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स श्रीमती नीलम स्वामी राव जी, डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर एम बीना जी, गणमान्य अतिथियों, सभी अवार्डीज और सभी बुनाकार, डिजाइनर, देवियों और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत आनंदित महसूस हो रही है। मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। जब हम यहाँ पे इधर आ रहे थे, एग्जीबिशन हम देखे, इतने सारे वैरायटीज देख के मुझे लगता है, मुझे कोई ने बोले मैडम आपका महिलाएं थोड़ा कम है, केवल 5 लोगों को दिया जाता है। मैंने बोली नहीं नहीं, हम लोग 100 लोगों को दिए नहीं, केवल 24 लोगों को दिए, हम सबको दिले 50 तो जरूर महिलाओं को मिलता है। इसने हमारे क्षेत्रीय विशेषताओं के संरक्षण भी किया है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीणों और जनजातियों समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोय है। हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। प्रकृति के अनुरूप जीने की पद्धति की उपयोगिता आज समूची विश्व में स्वीकृति जा रही है। देवियों और स्वजनों, हथकरघा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 35 से 25 महिलाएं हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है। देश इंडिपेंडेंट होने के कुछ साल बाद में धरती पे आई, स्कूल गई, जो असहयोग आंदोलन के टाइम महात्मा गांधी ने जिस बात गांव-गांव घूम के बोले थे, हम जो स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम घूमते थे, प्रभात फेरी करते थे, वही गाना हम गाते थे। हम तो ओडिया में पढ़ाई की है, तो मैं थोड़ा ओडिया के 2 पंक्ति बोलना चाहती हूँ। आजि आसिअछि नुआ जुगान्तर गांधी कहिछन्ति बोली बारबर, खाओ भात मुठे घर ढेंकी कुटा, पिंधो लुगा खंडे हाते काटी सूता। इट मीन्स आज नया युग आ गया है, इसीलिए जितने जमीन है, जमीन में खेती करो, अनाज उगाओ और अपना खाओ, अपना करो अपना खाओ। और कर्पास इतने उत्पादन होता है, इसीलिए वहां से थ्रेड निकालो और बुनाई करो और खुद का पहनो। आज भी मैं जो सेवन क्लास तो पढ़ती थी फॉर कितने साल हो गया है, लेकिन वो दो पंक्ति मेरे दिल में है, अभी भी मुझे याद है। इसीलिए आज जो देखती हूँ, केवल वो वाला मोटे वाला सूत नहीं, आज इतने फाइन फाइन कपड़ा बनाते हैं, कोई एक लाख दो लाख पांच लाख तोहफे, तो यहीं पे तो शॉप है, हम विदेशों में नजर क्यों डालें। देवियों और स्वजन, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से आज सम्मानित हुए वरिष्ठ बुनाकार विशेष बधाई के पात्र हैं। इन सभी ने ही आपने दशकों के कामकाजी जीवन में केवल अपने कौशल को ही नहीं सुबारा, बल्कि उन्होंने सैकड़ों बुनाकारों को प्रशिक्षित और प्रेरित भी किया है। बुनाकारों की नई पीढ़ी तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार पाने वाले सभी प्रतिभाशाली और कर्मठ बुनाकारों को भी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक देश के अनेक राज्यों की हथकरघा शैलियों के बेजोड़ उदाहरण का सर्जन उन कर्मठ बुनाकारों को किया है। इनके उत्साह और कौशल की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। हथकरघा का हमारी स्वतंत्रता संग्राम के गहरा जुड़ाव है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से देश।
5: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के जो सांस्कृतिक सभागार है, इसमें माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार वितरण के बाद संबोधित कर रही हैं।
6: मनाने जा रहे आ रही है। अब ये एक औपचारिक वार्षिक आयोजन भरी नहीं रहा, ये उत्सव है, हमारे देश की सांस्कृतिक एकता की इंद्रधनुष विविधता है। ये अवसर है सरकार और बुनकर समाज के उन साझे प्रयासों का याद करने हैं जो भारत के हथकरघा सेक्टर को प्रीमियम क्वालिटी की छवि दे रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हथकरघा क्षेत्र में के बहुआयामी विकास के लिए सरकार ने विभिन्न हितधारकों के सक्रिय योगदान से अनेक योजनाओं और अभियान पिछले एक दशक से चली आ रही है। इसके सुपरिचालना आप सामने आने लगा है। मुझे ये भी बताया गया है कि हाल ही में भारतीय हथकरघा उत्पादों के एक विशिष्ट कलेक्शन को विश्व सूत्रों वेबर्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड के रूप में वैश्विक ऑडियंस के सामने एक नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इससे भारतीय हैंडलूम को डिजाइन की एक नई विधा मिली है। देवी और स्वजनों, हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई है। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनाकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं, जो माननीय मंत्री में ने हम लोगों के सामने उल्लेख किया। भारतीय हथकरघा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय छवि निखर रही है, उसे और तेजी देते हुए इसे वेरीफाइड कल्चरल इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार प्रयास लगातार बढ़ा रहे हैं। गृहसज्जा और होम टेक्सटाइल क्षेत्रों में हैंडलूम को विशेष आर्थिक बढ़त मिलने की संभावनाएं बन रही है। वोकल फॉर लोकल अभियान के द्वारा भी भारतीय हथकरघा को स्थानीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक मंच पर, जैसे कि ग्लोबलाइज करने के लिए सोचा जा रहा है, इससे हमारे बुनाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक समृद्धि के नए अवसर भी मिल रही है और विश्व के समक्ष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट शिल्प कौशल की प्रतिष्ठा भी बढ़ रहे हैं। टेक्निक और नवाचारी डिजाइन के साथ अनेक प्रतिभाशाली युवा उद्यमी इस क्षेत्र में आने लगे हैं। सत्य और कौशल से इस सेक्टर की बहुआयामी सफलता की लंबे उम्र सुनिश्चित हो सके। युवाओं एंटरप्रेनर्स, डिजाइनर्स और स्टार्टअप्स पारंपरिक शिल्पों को नए ट्रेंड्स, ब्रांड्स और ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़कर इस क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं। भारतीय हस्तकर्ता प्रौद्योगिकी संस्थान और व्यवहार सर्विस सेंटर्स के अंतर्गत कार्यरत डिजाइन रिसर्च सेंटर्स युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि युवाओं को आधुनिक तकनीकों के प्रशिक्षण करने के साथ साथ उनके नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए नई टेक्नोलॉजीज का उचित उपयोग आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल सॉल्यूशंस के माध्यम से बाजार तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय हथकरघा उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक और अधिक सशक्त बनाया जा सकती है। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र देश के समावेशी विकास एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार बनेगा। मैं हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी पुरस्कार विजेताओं को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
0: The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, was speaking at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center on the occasion of the 12th National Handloom Day. The Honorable President also conferred the National Handloom Awards 2025 to the winners under the category of Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Awards 2025 to one awardee and the National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees and the National Handloom Awards for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for 2025 to two awardees and the National Handloom Award for Startup Producer Company for the year 2025 to one awardee. And she also released commemorative postage stamps, and the Honorable President of India also released two publications, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India and the Handloom Awards Book 2025.
5: आज का ये समारोह केवल पुरस्कार वितरण नहीं बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है जिसने सदियों से अपनी परंपराओं को जीवित रखा है। जब हम हाथ से बुना हुआ भारतीय वस्त्र धारण करते हैं तब हम केवल एक परिधान नहीं पहनते बल्कि एक बुनकर की मेहनत, उसके परिवार की आशा और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हैं। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के इस विशेष समारोह से आप सजीव विवरण सुन रहे थे। मैं शोएसी आर खान अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

आरिज, नदीम समी, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। फारूसगंज राजकुमार ढुकी, प्रमोद कुमार ढुकी और पुष्पेन्द्र कुमार ढुकी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुविहा नेवादा जिला गाजीपुर प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। मजरुका टिल्ला कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा शांत, एमपी उमंग मल्लिक, आकांक्षा मल्लिक, माही मल्लिक।

0: The issue through a video message only after the students' protest had continued for over 2 weeks. BJP MP Nishikant Dubey also demanded a transparent inquiry into the alleged irregularities in recruitment conducted by the JPSC and the JSSC. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. India and China engaged in frank discussions and reviewed the situation along the line of actual control during the 36th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs held in New Delhi yesterday. We have a report.
1: The External Affairs Ministry said in a statement that both sides held detailed exchanges on issues related to boundary delimitation, border management, mechanism building, and trans-border cooperation. It was underlined that maintaining peace and tranquility in the border areas is essential for the overall development of bilateral relations. The Indian delegation was led by Sujit Ghosh, Joint Secretary of East Asia in the MEA. The Chinese delegation was led by Hu Yanqi, Director General of the Boundary and Oceanic Affairs Department of the Ministry of Foreign Affairs. Both sides agreed to continue to use existing diplomatic and military channels, including the WMCC, local commander-level meetings, and other agreed mechanisms to resolve outstanding issues and avoid misunderstanding and miscalculation along the LAC. The Indian side reiterated the need for early convening of the next meeting of the expert-level mechanism on transborder rivers and emphasized the importance of sharing technical details on upstream projects. With Suparna's report, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
0: President Draupadi Murmu today conferred the Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for the year 2025 at the Rashtrapati Bhavan in New Delhi. A total of 22 awards, comprising 3 Sant Kabir Handloom Awards and 19 National Handloom Awards, were conferred upon the handloom weavers for their craftsmanship, innovation and contribution to the preservation of India's handloom traditions. 4 commemorative postage stamps celebrating the country's rich and diverse handloom weaving traditions were also released on the occasion. Addressing the program on the occasion of the 12th National Handloom Day, President Murmu said the handloom sector serves not only as a source of livelihood, but also as a powerful instrument of inclusive development. She said for thousands of years, handloom has been an integral part of India's cultural and civilizational journey.
2: Hajaro Varshe हथकर्ता भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है हथकर्ता क्षेत्र से रोजगार महिला सशक्तिकरण कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है हथकर्ता भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है
0: The president also extended best wishes to the weavers, entrepreneurs, designers, students and everyone associated with India's handloom sector.
2: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देती हूं.
0: Prime Minister Narendra Modi today shared an article written by Union Textiles Minister Giriraj Singh in an English daily on the occasion of National Handloom Day. In a social media post, the Prime Minister said, Mr. Singh in his article has described handloom as one of India's greatest civilizational strengths and highlighted the country's rich and diverse regional textile traditions. The Textiles Minister has called upon India's youth to bring together heritage and technology, creativity and enterprise to shape the next chapter of the handloom sector and strengthen the livelihoods of weavers. Rain lashed several parts of northwest India today. The India Meteorological Department, IMD, has issued a yellow alert for moderate to heavy rainfall for Delhi today. Rainfall is also expected to continue over parts of Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan, Muzaffarabad, Himachal Pradesh and Uttarakhand till the 12th of this month. In Odisha, fresh rainfall has revived flood concerns in several parts of the state, even as relief and restoration operations continue in the aftermath of the recent floods. Our correspondent reports that with another spell of heavy rainfall forecast, the state government and disaster management agencies have intensified preparedness and monitoring across vulnerable areas.
3: Odisha's post-flood situation remains under close watch as fresh rainfall has triggered renewed flood concern in Baleshwar. The Jalaka River has crossed the danger mark at Mathani, rising to 6.56 meters against the danger level of 6.50 meters, inundating low-lying agricultural land in Basta and nearby areas. Authorities are monitoring vulnerable embankments and remain prepared for evacuation if required. Meanwhile, the IMD has forecast widespread rain, thunderstorms and lightning across Odisha for the next 5 days, with an orange warning for Mayurbhanj and yellow warnings for several other districts. Another cyclonic circulation is likely to develop over the northwest Bay of Bengal around 12th of this month. The state government has already released 110 crore rupees as preliminary assistance for 22 flood affected districts, with the highest allocations going to Baleshwar, Jajpur and Bhadrak districts. Prakash Das, Akashvani News, Bhubaneswar.
0: In Kerala, IMD has predicted heavy rainfall across the state. More from our correspondent.
4: IMD's heavy rain alert is continuing in Kerala for the third consecutive day. 8 of the 14 districts are under orange alert, indicating the possibility of isolated very heavy rainfall. The remaining 6 districts are under yellow alert, with a chance of isolated heavy rain. The high range areas have not received heavy rain today, bringing some relief. At the same time, parts of Kozhikode and Wayanad are experiencing heavy rainfall, while other districts are witnessing moderate rain. The ban on fishing activities continues along the coastal areas. Smithy M. Pallurithi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: In sports, Indian Grandmaster Pragyananda has clinched the Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz title in the United States. The 20-year-old secured the championship after drawing against Uzbekistan's Grandmaster Javohir Sindarov in the penultimate round, finishing the tournament with 23 points out of a possible 35. In badminton, Indian shuttlers Rakshita Ramraj and Ashmita Chaliha have stormed into the women's singles semi-finals of the Korea Masters in Asan today. Rakshita defeated compatriot Tanvi Sharma in the quarterfinals. She will now face fellow Indian Ashmita Chaliha in the semi-finals. Ashmita advanced to the semi-finals after stunning top seed Hina Akechi of Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes MSME Development Amendment Bill to address payment delays and simplify dispute resolution. Both houses adjourned to meet again on Monday amid opposition uproar. Prime Minister Narendra Modi meets newly joined MPs of NDA, expresses concern over repeated disruptions in Parliament. India and China discuss situation along line of actual control. Both sides agree to maintain peace and tranquility in border areas. President Draupadi Murmu presents National Handloom Awards 2025 at Rashtrapati Bhavan. Heavy rainfall lashes several parts of northern India. In chess, Grandmaster Pragyananda wins maiden St. Louis Rapid and Blitz title in the United States. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
6: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: इससे पहले पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
7: और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
2: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।

0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
1: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीवियन इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए है। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
1: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुँचे।
2: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूँ।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपरा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
0: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
4: इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय

0: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
1: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, आज फिर पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं आपकी संचालिका सुरक्षित तामा एक नए विषय के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान समय डिजिटल समय है। इस समय हमने कई नए प्रकार की खोज की। क्या हमने वर्तमान समय में हथकरघा या फिर कहे हैंडलूम और पारंपरिक वस्त्र उद्योग से जुड़े बुनकरों की स्थिति में आधुनिक तकनीक, डिजिटल बाजार और सरकारी योजनाओं के कारण कुछ नए बदलाव आए हैं? इन्हीं कुछ बदलाव के साथ हैंडलूम ने किस प्रकार से ऊंचाई छुई है हम जानेंगे। दोस्तों, हमारी आज के कार्यक्रम का विषय है वर्तमान समय में बुनकरों की स्थिति, बदलाव और चुनौतियाँ, और इस वार्ता को प्रस्तुत करेंगे सुनीता राउत। तो आइए इस वार्ता को सुना जाए।

नमस्कार श्रोताओं, जैसे कि आज का हमारा विषय है वर्तमान समय में बुनकरों की स्थिति, बदलाव और चुनौतियाँ। जैसे कि भारत में बुनकरों का इतिहास 5000 वर्ष से अधिक पुराना है, जिसकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से हुई। प्राचीन काल में मलमल और रेशम जैसे भारतीय वस्त्र दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। 18वीं सदी से ब्रिटिश शासन और औद्योगिक क्रांति ने हथकरघा उद्योग की भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाद में महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन ने इसे पुनर्जीवित किया। 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और देशी को अपनाकर बुनकरों के उत्थान का प्रयास किया। चरखा और खादी आजादी के प्रतीक बन गए, जिससे हथकरघा उद्योगों को एक नई पहचान और सम्मान मिला। क्योंकि भारत ऐतिहासिक रूप से कुछ प्रसिद्ध हाथ से बुने हुए वस्त्रों के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि बनारस की बनारसी साड़ी, कच्छ की बांधनी, मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी, मैसूर की जॉर्जेट, उड़ीसा की संबलपुरी साड़ी, बंगाल की जामदनी साड़ी, कांजीपुरम से दक्षिण की मंदिर, रेशम और अन्य शामिल है। चूंकि भारत 30,000 वर्ष से अधिक बुनकरों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करने वाला हथकरघा उद्योग भारत में कृषि के लिए दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। देश के कपड़ा उद्यान में हथकरघा का योगदान करीब 23% है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण रोजगार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हथकरघा उत्पाद देश के वस्त्र निर्यात का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। हथकरघा से उत्पादित वस्त्र के निर्यात में साड़ी, वस्त्र एवं घरेलू साज सज्जा के रूप में प्रमुख रहे हैं। इस प्रकार हमें यह भी देखने को मिलता है कि स्वतंत्रता के समय बुनकरों की स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता और सूत प्राप्त करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अधिकांश कच्चा माल विदेशों में निर्यात किया जाता था और ब्रिटेन की मैनचेस्टर मिलों से आने वाले सस्ते कपड़ों के सामने हाथ से बुने महंगा कपड़ा बाजार में

0: टिक नहीं पा रही थी। आर्थिक शोषण के रूप में भी बुनकरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि बिचौलियों और व्यापारियों द्वारा बुनकरों का अत्यधिक शोषण किया जाता था, उन्हें उनके काम का अत्यधिक और उचित मूल्य नहीं मिलता था और कई पारंपरिक बुनकरों को अपनी पीढ़ियों की पुरानी कला छोड़नी पड़ी और वे कृषि मजदूर या शहरों में दहाड़ी मजदूर बनने को मजबूर हुए। जैसे कि आज भी वर्तमान समय में फैशन के चलन में तेजी बढ़ी है और इससे वस्त्र उद्योग भी अछूता नहीं है, जिसके कारण इसमें जहां एक तरफ बदलाव की मांग बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न चुनौतियों को भी जन्म दिया है। बुनकरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, बुनाई उद्योग की लाभप्रदाता, बुनकरों के सामने आने वाले चुनौतियां, वित्त सहायता, आर्थिक स्थिति बुनाई की प्रमुख समस्या बनी है और वर्तमान में जिसका सामना बुनकर समाज कर रहे हैं। इस प्रकार उक्त तथ्यों के आलोकों से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में बुनकर समाज को किस प्रकार नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि मठराज और राजकुमार 2008 ने अध्ययन में पाया कि रामानाथनपुरम जनपद तमिलनाडु स्थित हथकरघा उद्योग उत्पादन संबंधी अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है, जिनमें कुशल श्रमिकों की कमी, धागे की कीमतों में अस्थिरता को देखा गया है, अपर्याप्त कार्यशील पूंजी तथा सरकारी ऋण की अनुपलब्धता प्रमुख है। तो इन समस्याओं के निस्तारण के लिए हथकरघों का आधुनिकीकरण, उत्पादन में नवीनता, लागत में कमी तथा विपणन प्रणाली में सुधार आदि किया जाना चाहिए। जैसे कि 2013 के सर्वेक्षण में यह देखा गया कि पश्चिम बंगाल के शक्ति चालित हथकरघों में कार्यरत अधिकांश बुनकर अशिक्षित है तथा उन्हें वस्त्र उद्योग के विकास एवं बुनकरों की सामाजिक सुरक्षा हेतु संचालित सरकारी ऋण की अनुपलब्धता प्रमुख है तथा उन्हें वस्त्र उद्योग के विकास एवं बुनकरों की सामाजिक सुरक्षा हेतु संचालित सरकारी योजनाओं की कोई जानकारी नहीं है और ना ही कच्चे मालों के क्रय ऋण और ऋण तथा निर्यात माल के विपणन की कोई व्यवस्थित सुविधा है। इस कारण वे हमेशा गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसी प्रकार 2014 में तमिलनाडु राज्य के तिरुनवल्ली जनपद स्थित कस्बे की स्थानीय कृषि उत्पादों पर आधारित हथकरघा उद्योग की गतिशीलता और इस कार्य में संलग्न बुनकरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के विश्लेषण में पाया गया कि अशिक्षा, वित्तीय बाधाएं, स्वास्थ्य समस्याएं तथा सरकारी सहायता का अभाव आदि कारक बुनकरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। उपरोक्त साहित्य समीक्षा के विश्लेषण से स्पष्ट है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के अधिकांश बुनकर निम्न सामाजिक, आर्थिक एवं ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों से आते हैं, जिसके कारण उनको अपने व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष में उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जनपद में कार्यरत बुनकरों की समस्या एवं चुनौतियों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन नितांत आवश्यक है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि बुनकर समुदाय की समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी रणनीतियां बनाते हुए इस वर्ग की चुनौतियों को कैसे कम किया जा सकता है। चूंकि इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि इस क्षेत्र में अधिकांश 31 से 40 आयु वर्ग के लोग बुनाई के कार्य में संलिप्त है, जबकि युवा वर्ग की कमी भागीदारी का मुख्य कारण बुनाई व्यवसाय के प्रति उनकी रुचि का ना होना है एवं वृद्धजनों की इस कार्य में कम भागीदारी का कारण उनकी शारीरिक शक्ति में ह्रास है। और बुनकरों की शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि केवल 27% उत्तरदाता ने प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षा ग्रहण की है, 17.25% निरक्षर है, 20% ने जूनियर हाई स्कूल तक और 12.50% ने परा स्नातक तक, 10% ने हाई स्कूल तक और 7.50 ने स्नातक तक तथा केवल 5% उत्तरदाता इंटरमीडिएट तक शिक्षा ग्रहण किए हैं। बुनकरों की प्रमुख समस्या में एक समस्या बिजली की भी समस्या है, क्योंकि बिजली दर का महंगा होना माना है। 15% ने उत्पादित माल का उचित दाम ना मिलना, 10% से उत्पादित माल की बिक्री ना होना, 7.50% के क्रमशः बाजार में उत्पाद की मांग कम होना तथा कच्चे माल का महंगा होने को बुनकर समुदाय की प्रमुख समस्या माना है, और भारतीय श्रम की अनुपलब्धता एवं पूंजी की कमी तथा केवल 2.50% ने व्यवसाय लाभ की कमी को बुनकर समुदाय की प्रमुख समस्या माना गया है।
1: दोस्तों, कार्यक्रम को थोड़ा सा विराम देते हैं, सुनते हैं ये गीत।

चूंकि उक्त विश्लेषण तथ्यों की पुष्टि से यह स्पष्ट होता है कि बुनकर समाज किस प्रकार आज भी वर्तमान समय में अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसीलिए बुनकर समुदाय की उक्त समस्याओं के समाधान हेतु सरकार को व्यापक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। तो इन समस्याओं के समाधान हेतु निम्न सुझाव से हल किया जा सकता है, जैसे कि बुनकरों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध

कराई जाए, जैसे यह समुदाय कम लागत में अच्छा एवं अधिक उत्पादन कर सके, जैसे कि बुनाई व्यवसाय में लिप्त बुनकरों को सस्ते मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध कराया जाए, सरकार द्वारा बुनकरों के उत्पादित उत्पाद का उचित मूल्य निर्धारित किया जाए, उत्पादित माल की बिक्री हेतु सरकारी डिपो खोला जाए, जिससे बुनकर समाज की विक्रय संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके। बुनकरों को नई मशीनों को क्रय करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाए तथा सहकारी समितियों एवं बैंक से सस्ते दर पर पूंजी हेतु ऋण उपलब्ध कराए जाए। केंद्र एवं सरकार द्वारा संचालित बुनकरों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन करने हेतु बुनकरों को नए कौशल विकास हेतु समय समय पर सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। चूंकि बुनकर हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत के पहरेदार है, जब तक इन्हें उचित सम्मान, आर्थिक स्थिरता और बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक इस प्राचीन कला को बचाना कठिन होगा। सरकारी और सामाजिक दोनों स्तरों पर ठोस प्रयास ही इसकी स्थिति को सुधार सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार शिल्प कौशल और उत्कृष्टता का उत्सव मनाती है, जैसे 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2025 को भारत मंडप नई दिल्ली में मनाया गया, और इस कार्यक्रम में भारत के माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति में 5 संत कबीर पुरस्कार विजेताओं और 19 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं सहित कुल 24 पुरस्कार विजेताओं को 2024 के लिए प्रतिष्ठित एवं संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हथकरघा विपन्न सहायता घटक का हिस्सा है। ये पुरस्कार बुनकरों, डिजाइनरों, विपन्न को स्टार्टअप और उत्पादक कंपनियों के कार्य को मान्यता देते हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में बदलाव लाया है, और प्रत्येक संत कबीर पुरस्कार में 3.5 लाख रुपए नगद, 1 स्वर्ण सिक्का एवं 1 ताम्र पत्र, 1 शॉल और 1 प्रमाण पत्र शामिल है। इस प्रकार भारत सरकार ने आधुनिक चुनौतियों के अनुकूल ढंले में हथकरघा क्षेत्र का समर्थन करने के लिए पुरानी चुनौतियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण को अपनाया, जो कि वस्त्र मंत्रालय ने 4 अगस्त 2025 को IIT दिल्ली के रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क में हैंडलूम हैकाथान 2025 का शुभारंभ किया, और यह नवाचार आधारित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वैश्विक बाजारों में भारतीय हथकरघा की भूमिका को कुछ इस प्रकार हम देख सकते हैं, जैसे कि भारतीय हथकरघा अपनी समृद्ध बनावट, मिट्टी के रंगों और जटिल शिल्प कौशल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर बुनाई की एक कहानी होती है, और यही संस्कृति, गहराई और विशिष्टता भारतीय हथकरघा उत्पादों को दुनिया भर में घरों और दिलों में एक खास जगह दिलाती है। अपनी समृद्ध विरासत के बल पर भारत व्यावसायिक स्तर पर हथकरघा वस्त्रों का दुनिया का एकमात्र प्रमुख उत्पादक बनकर उभरा है। संक्षेप में कहे तो भारतीय बुनकर समाज आज भी अपनी पारंपरिक विरासत को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही है। यदि उन्हें तकनीकी रूप से अपग्रेड नहीं किया जाए और उचित वित्तीय सहायता दी जाए, तो वह इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को और भी अधिक सुधार सकते हैं। चूंकि सरकार भी बुनकरों की स्थिति के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है, जैसे कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, यह खादी और हथकरघा को वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ने के लिए नए प्रयास शुरू किए गए हैं, जैसे कि कच्चा माल आपूर्ति योजना। इसके तहत बुनकरों को सूती धागे, घरेलू रेशम और ऊन पर माल धुलाई शुल्क की प्रतिपूर्ति और 15% तक की मूल्य सब्सिडी दी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा, बुनकरों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना के तहत शामिल कर वित्तीय सुरक्षा कवच दिया जा रहा है।

0: निष्कर्ष, जैसे कि बुनाई का कार्य एक गहन मानवीय श्रम का कार्य है, जिसके लिए बुनकरों को बुनाई कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एवं पश्चात दोनों स्थितियों के लिए मानवीय सहयोग की आवश्यकता होती है। और अध्ययन क्षेत्र में यह पाया गया है कि अधिकांश बुनकर पुरुष वर्ग के है तथा जो संयुक्त परिवार से भी संबंधित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बुनकरों को उक्त कार्य के संपादन एवं संयुक्त परिवार के सदस्य द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से परिवार की महिलाएं बिना किसी भुगतान के सहयोग प्रदान करती है। इसीलिए उक्त व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से तो कम है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से अधिक है। तो इस प्रकार भारत का हथकरघा क्षेत्र सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो इस विशेष दिवस को मनाते हुए हम अपने कारीगरों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना और बुनाई परंपरा की रक्षा करने और सुनिश्चित करने के अपने सामूहिक संकल्प की और पुनः पुष्टि करने और विरासत, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के धागे एक मजबूत और जीवंत भविष्य का निर्माण करना है। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक वार्ता जिसका विषय था वर्तमान समय में बुनकरों की स्थिति, बदलाव और चुनौतियाँ। और इस वार्ता को प्रस्तुत कर रही थी सुनीता राउत। आशा करते हैं हमारे सभी श्रोताओं को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और इसी के साथ आपकी संचालिका सुरक्षित तामंग को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से आज अपने निवास पर मुलाकात की। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण हो। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। सरकार ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। लोकसभा में लिखित उत्तर देते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों के विस्तार और विकासशील देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर लगातार बल देता रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अनुकूल, नवीन और टिकाऊ शिक्षा प्रणालियों के निर्माण के लिए ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने आज भुवनेश्वर में आयोजित 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणालियों को आर्थिक अनिश्चितताओं, जलवायु परिवर्तन और तीव्र तकनीकी प्रगति जैसी वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम होना चाहिए। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेजी से वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने भेजी गई द्वेषपूर्ण फाइल

0: खातों के माध्यम से पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खातों को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों से एक ही तरह की कार्यप्रणाली वाली घटनाएं सामने आई हैं। केरलम के 4 उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोईकोड, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिले दोपहर तक ऑरेंज अलर्ट पर थे, अब उन्हें रेड अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 4 अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी है, वहीं शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कई स्थानों पर आज तेज वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में आज मध्यम से तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 78,499 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 65 अंक गिरकर 24,571 पर बंद हुआ। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखेर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार पछि पुनः स्वागत छ एफएम 103.5 मेगाहर्जको तरङ्गमा आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रमा। श्रोतहरूले हामीलाई आकाशवाणी दार्जिलिङ एफएम 100.2 मेगाहर्ज, प्रसार भारती ओटवेब साथै न्यूज अन एयर एपमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिले समय साँझको 5:05 भइरहेको छ र यहाँहरूको साथमा छु म सुनिल। र आजको अधिवेशनलाई निरन्तरता दिँदै अब सुरु गर्न लागिरहेका छौँ फौजी श्रोताहरूको निम्ति कार्यक्रम जय जवान। पहिले सुन्नुहोस् यो छोटो सन्देश।

0: आतंकवाद, शत्रुता र हिंसा मुक्त वातावरणमा मात्रै अघि बढ्न सक्ने बताउनु भएको छ। लोकसभामा लिखित उत्तर दिँदै उहाँले पाकिस्तानले सीमा पारबाट हुने आतंकवादी गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहेको र त्यसलाई भारत विरुद्ध राजनीतिको साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। डाक्टर जयशंकरका अनुसार पुलवामा आतंकवादी आक्रमणपछि भारतले पाकिस्तानलाई दिएको मोस्ट फेभर्ड नेसनको सुविधा फिर्ता लिँदै आयात हुने सबै सामानमा 200% भन्सार शुल्क लगाएको थियो। विदेश मन्त्रीले यसका साथै सिन्धु जल सन्धि स्थगन, अटारी नाका बन्द, भिसामा कडाई तथा दुवै देशका कूटनीतिक उपस्थितिलाई सीमित गर्ने लगायतका पहल चालेको जानकारी दिनुभयो। विदेश मन्त्री डाक्टर जयशंकरले पाकिस्तान र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीरका आतंकवादी संरचनालाई लक्षित गरी सैन्य कारबाही समेत गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दुवै देशका कूटनीतिक नियोग कायम रहेको र महानिदेशक सैन्य सञ्चालन, क्षेप्यास्त्र परीक्षणको पूर्व सूचना तथा बन्दीहरूको सूची आदान प्रदान जस्ता कार्यगत सम्पर्क भने जारी रहेको बताउनुभयो। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्रले निजी क्षेत्रका संस्था र वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीहरूलाई बोस स्क्याम नामक साइबर ठगीबाट सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय साइबर अपराध उजुरी पोर्टलमा यस्ता घटनाको उजुरी बढिरहेको छ। ठगी गर्नेहरूले वाट्सएप, एसएमएस अथवा इमेल मार्फत जिप फाइल पठाएर तत्काल खोल्न दबाव दिने गरेका छन्। यस्तो फाइल कम्प्युटरमा खोलेपछि उपकरण ह्याक हुने र वाट्सएप खाता नियन्त्रणमा लिएर पीडितको सम्पर्क र समूहमा त्यही फाइल स्वतः पठाइने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतले आउने वर्ष पहिलो ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सवको आयोजना गर्नेछ। आज मुम्बईमा ब्रिक्स वेब्स बजार अवधि यसको घोषणा गरियो। फिल्म तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई दरिलो बनाउने उद्देश्यले धेरै सम्झौताको पनि घोषणा गरियो। राष्ट्रिय फिल्म विकास निगम एनएफडिसी र भारतीय राष्ट्रिय फिल्म अभिलेखागार सहित धेरै संस्थानहरूले ब्राजिल, रुस र भियतनाम जस्ता देशका सहयोगी संस्थानसित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। सहभागी संगठनहरूले फिल्म सहनिर्माणको अवसरको पत्तो लगाउनमाथि पनि सहमति व्यक्त गरे। दुई दिवसीय वेब्स ब्रिक्स बजार आज समाप्त भयो। एनएफडिसीका प्रबन्ध निदेशक प्रकाश मागदुमले भन्नुभयो, ब्रिक्स वेब्स बजारमा 20 जना सदस्य र सहयोगी देशका 900 भन्दा अधिक प्रतिनिधिले सहभागिता जनाए। जम्मू कश्मीरका मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाले उधमपुर र रियासी जिल्लामा पिउने पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन सुदृढ बनाउनका लागि 140 करोड रुपियाँभन्दा अधिक लागतका 2 महत्त्वपूर्ण परियोजनाको शिलान्यास गर्नुभयो।
1: खबर पढ्छ नमामी बोसुरुत्रो। प्रथमे विशेष खबर। ভারত প্রস্তাবিত বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ সংশোধনী বিল নিয়ে এক মার্কিন আইন প্রণেতার আপত্তি খারিজ করে দিয়ে বলেছে, সংসদে গৃহীত আইনি সিদ্ধান্তগুলি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। লোকসভায় ছাড়পত্র পাওয়ায় সংসদে আজ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প সংস্থা বা এমএসএমই উন্নয়ন সংশোধনী বিল 2026 পাশ হয়েছে। সরকার ই বাজার বা রেমের মাধ্যমে গত 10 বছরে মোট 20 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা করেছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ নতুন দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে 2025 সালের জাতীয় হ্যান্ডলুম পুরস্কার এবং সন্ত কবির হ্যান্ডলুম সম্মান প্রদান করেছেন। কোরিয়া মাস্টার্স ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শাটলার রক্ষিতা রামরাজ এবং অস্মিতা চালিহা মহিলাদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন। আসছে বিস্তারিত খবরে। ভারত প্রস্তাবিত বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ সংশোধনী বিল নিয়ে এক মার্কিন আইন প্রণেতার আপত্তি খারিজ করে দিয়ে বলেছে, সংসদে গৃহীত আইনি সিদ্ধান্তগুলি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল আজ নতুন দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বহু দেশই আছে যারা বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ করে।
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাংবাদিক সম্মেলনের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে শ্রী জয়সওয়াল বলেন, বেসরকারি সংবাদ মাধ্যম আয়োজিত অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভারতের কোনো ভূমিকা নেই। সরকার এ ধরনের অনুষ্ঠানে কথিত বক্তব্য সমর্থন করে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
2: I have already stated government's position on the issue before the press conference happened. You would have seen those remarks. You were present here. I am reiterating it here. government had no role to play in what was an event by a private media.

नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स स्कैन का ये नया

0: र बर्खा कालमा क्याच द रेन वेयर इट फल्स वेन इट फल्स, अर्थात् वर्षा जल सञ्चय गरौँ, जति बेला पर्छ पानी, जहाँ पर्छ पानी ती बर्खा जलको सञ्चय गरौँ, यसलाई जोगाउँ, सङ्कटको समयमा यो हामीलाई काम दिनेछ। जस्तै भारत सरकारले वर्षा जल सञ्चयन यानि रेन वाटर हार्भेस्टिङ सिस्टम्सहरू डेभलप गरिरहेको छ, यसको निम्ति नयाँ नयाँ अनुसन्धान इनोभेसन नवाचार व्यवहारमा आइरहेको छ र आम मानिसहरूलाई यसको निम्ति सहयोग पनि प्रदान गरिरहेको छ। जति पनि जल संसाधनहरू थियो अनि छ यसरी वाटर बजेटिङ त्यसलाई रिजुबिनेसनको निम्ति काम गरिरहेको छ अनि पुनर्जीवनको निम्ति काम गरिरहेको छ। जति पनि भूजल स्तरलाई बढाउनु पर्ने काम यानि जमिन मुनिको पानीको स्तर मात्रा बढाउनुको निम्ति जति पनि बोरवेलहरू छ त्यसलाई रिजुबिनेट यसलाई रिचार्ज गर्ने काम भइरहेको छ र यसको निम्ति देशभरि जलशक्ति केन्द्रहरू स्थापना गरिँदैछ जसमा आम नागरिकको सहभागिता छ। देशको जति पनि खण्डहरू छन् जति पनि जिल्लाहरू छन् त्यो प्रत्येक जिल्लामा यस योजनालाई लागू गर्ने सरकार प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
1: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखिए समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित, इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
3: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
5: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
2: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
5: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
2: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
6: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज दो दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
2: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। दो दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
8: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मकदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान एनएफडीसी ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि एनएफडीसी और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फंड के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
9: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
10: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
11: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के चार अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष छह जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले एक सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
12: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे

प्रस्तुत है छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा नारानिया का नमस्कार। बरसात से प्रेम का अटूट नाता है। कहते हैं प्रेम कभी शब्दों का मोहताज नहीं होता। प्रेम तो एक एहसास है जो कभी किसी मुस्कान में उतर आता है तो कभी किसी खामोशी में, कभी किसी खत की स्याही में और कभी बरसती हुई बारिश की हर बूंद में।

जब होता है तो मौसम बदलने लगते हैं, धूप नरम लगने लगती है, चांद कुछ ज्यादा ही अपना सा लगने लगता है और हवा जैसे किसी का नाम कानों में घोलकर गुजरने लगती है और बरसात की हर एक बूंद हम पर ऐसे बरसती है जैसे किसी का प्रेम बरस रहा हो।

बरसात में आसमान भी खुलकर प्यार बरसाता है और धरती भी उसे अपनी खुली बाहों में तड़पकर समेट लेती है। बरसात की हर एक बूंद जैसे किसी अधूरे ख्वाब की कहानी कहती है।

अंतराल के बाद छाया गीत में आपका फिर से स्वागत है। बरसात पुरानी यादें ताजा कर देती है तो कभी खिड़की या छत पर गिरती बूंदें किसी की दस्तक देने लगती है और भीगी हुई मिट्टी की खुशबू किसी पुराने मिलन की याद बन जाती है।

रात की तन्हाइयों में जब बारिश की धीमी फुहारें खिड़की से टकराती हैं, तब दिल भी किसी का नाम लेकर मुस्कुरा देता है। चांद बादलों में छिपा होता है, तब भी उसकी रोशनी दिल को रोशन कर रही होती है। ठीक वैसे ही जैसे सच्चा प्रेम दूर होकर भी दिल को वैसे ही धड़काता है जैसे महबूब सामने ही बैठा हो।

प्रेम में मिलना जितना सुंदर होता है, विरह उतना ही गहरा दर्द वाला। दूरियां प्रेम को कम नहीं करती, बल्कि और बढ़ा देती हैं। बिछड़कर भी प्रेमी एक दूसरे के लिए जब दुआ बन जाएं, तो ऐसा प्रेम अमर हो जाता है। कुछ रिश्ते साथ होकर भी अधूरे रह जाते हैं और कुछ दूर रहकर भी पूरी जिंदगी का सहारा बन जाते हैं।

हामी पुनः उपस्थित रहनेछौँ। बिदा दिनुहोस्। प्राविधिक अधिकारी फुलेन रय, प्रसारण सहयोगी सुभाष विजय अनि म सुनिललाई पनि शुभरात्रि। जय हिन्द।